लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी, पार ब्रह्म की शरण जन ताकी, जन्म जन्म के पै मोह नवारी, नानक दास प्रभ कृपा तारी। सुही महला पंजवा, अनक बींग दास के पर हरिया, कर कृपा प्रभ अपना करिया, तुम्हें छुड़ाई लियो जन अपना, उर्ज परियो जाल जग सुपना रहाउ। पार्वत दोख महाबिकराला, खिन मह दूर किए दयाला, सोग रोग विपत तपारी, दूर पही जप नाम मुरारी। दृष्ट तार ली नो लड़ लाई, हर चरण गहे नानक शरणाई। सूही महला पंजवा, दीन छडाई दुनी जो लाई, दुई सदाई खुनामी कहाई, जो तस पावे सो परवान, अपनी कुदरत आपे जान रहाऊ। सच्चा धर्म पुन भला कराए, दान दीन कह तो सह दुनी न जाए, सर्ब निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम गोचर साह सच साहिब मेरा, नानक बोले बुलाया तेरा। सूही महला पंजवा, प्रातः काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओट सवारी, सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम रहाउ। प्रभ बनासी रहन दिन गाऊ, जीवत मर्त ने चल पावन थाऊ। सो सा सेव जित टोट न आवै, खात खर्चित सुख आनंद बिहावै, जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सूही महला पंजवा, गुर पूरे जब पही दयाल, दुख बिनसे पूर्ण पही काल, पेख पेख जीवा दर्स तुम्हारा, चरण कमल जाई बलहारा। तुझ बिन ठाकुर कबन हमारा, रहाऊ साध संगत जान स्यों प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई, जप हर हर नाम अचर्ज प्रताप, जाल न सकै तीने ताप, निमख नाम बिसरै हर चरण तुम्हारी, नानक मांगै नाम प्यारी। सूही महला पंजवा, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे, सुन बेनती प्रभ दीन दयाला, साध गावे गुण सदा रसाला। राऊ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करे बसे हार, नेरा जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवन हार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवन हार सुजाना। सूही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्ट न तारत, मिथ्या मोह बंदे नित पारच, माधवी पज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर शरणी। राउ करत बिकार दू कर चारत, राम रतन रिद तिल नहीं तारत, परण पोखण संग औध बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण समरथ गोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संगत रह पै सागर, हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जन सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिनसे, गुर पूरे मिल पापत जायन। रहाऊ जीवन पदवी हर का नाऊ, मन तन निर्मल साच सुवाऊ, आठ पहर पार ब्रह्म ते आईए, पूर्व लिखत होए ता पाईए, शरण परे शरण पय जप दीन दयाला, नानक जाचा संतर वाला। सूही महला पंजवा, घर का काज न जानी रूढ़ा, झूठे तंदे रचियो मूढ़ा, जित तू लावे तित तित लगना, जा तू देह तेरा नाउ जपना रहाऊ। हर के दास हर से तीरा, ते राम रसायण अनदन माते, बाह पकड़ पकड़ प्रभ आपे काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे। उदर स्वामी प्रभ कृपा तारी, नानक दास हर शरण द्वारी। सूही महला पंजवा, संत प्रसाद निचल कर पाया, सर्ब सुख फिर जो नहीं दुलाया, गुरु ते आई हर चरण मन चीने, ताते करते आसर चकीने। राउ गुण गावत अचुत अवनासी, ताकी ताते काटी जमकी फांसी, कर कृपाली ने लड़ लाई, सदा आनंद नानक गुण गाई। सूही महला पंजवा, अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपै तिस की गत होवै, हर हर नाम नित रसन बखाणी। राउ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन में परवेसा, साधु धूर मुख मस्त कलाई, नानक उदरे हर गुर सरणाई। सूही महला पंजवा, कर तीजा गोविंदा गुण गाओ दयाला, दर्शन देहो पूर्ण कृपाला, रहाऊ कर कृपा तुम ही प्रतपाला, जियो पिंड सब तुमरा माला, अमृत नाम चले जप नाला, नानक जाचै संतर वाला। सूही महला पंजवा, तिस बिन दूजा अवर न कोई, आपे थम्मै सच्चा सोई, हर हर नाम मेरा आधार, करण कारण समरथ अपार, रहाऊ सब रोग मिटावे नवा नरुआ, नानक रखा आपे हुआ। सूही महला पंजवा, दर्शन कौलो चै सब कोई, पूरे भाग प्राप्त होई, रहाऊ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई,
प्रेम विशोहा करत कसाई हृदय जंत तिस दया न जाई दया न पाई अनक जन्म बीतियन परमाई घर वास न देवै दुतर माई दिन रैन अपना किया पाई ते किस दोष न दीजै किरत पवाई सुन साजन संत जन पाई चरण का शरण नानक गत पाई राग सूही महला पंजवां कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी जा मैं गुन गाई कित ही कामना तौल हारू जित हर बिसराई राओ आनंद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आई जल जाओ ए बड बना माया लपटाई पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोखाई ऐसो राज ना कित काज जित नह त्रपताई नगन फिरत रंग एक कै ओह शोभा पाई पाठ पटंबर बिरथया जहे राच लुभाए सब किश तुमरै हाथ प्रभु आप करी कराई सास सास सिमरत रहा नानक दान पाई सूही महला पंजवां हर का संत प्राण तन तिसका पनिहारा भाई मीत सुत सगल ते जीहूं ते प्यारा रहाऊ केसा का कर भीजना संत चौर टलावो शीश निहारो चरण तल धूर मुख लाव मिश्र बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अवमान शरणी परो हर गुण निद पाई अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसारू अमृत वचन मन मैं सिंचो बंदो बार बार चितवाओ मन आसा करो जन का संग मांगो नानक कहो प्रभ दया करु दास चरणी लागू सूही महला पंजवां जिन मोहे ब्रह्मांड खंड ताहू मैं पाऊ राख ले हुए बिखई जियो देऊ अपना नाऊ रहाऊ जाते नाही को सुखी ता कह पाछे जाऊ छोड़ जाहे जो सगल काओ फिर लपटाऊ करो कृपा करुणा पते तेरे हार गुण गाओ नानक की प्रभु बेनती साध संग समाओ राग सूही महला पंजवां पड़ कर पंजवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लाल ना जप मन गोविंद कै अबरना पिन अबर नहीं को लेखय संत लाग मन है शाड़ दुबदा की कुरिया रहाओ निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठ हरिया पिन पिन पिन पिन करिया वेच मान कोट वरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बोबिज फिरिया पर कौ हिरिया बिखना किरिया अब साधु संग परिया हरिद्वार खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया सूही महला पंजवां रास मंडल की नौ अखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाऊ बहु बिद रूप रंग अपारा पेखा खुशी भोग नहीं हारा सब रस लैत बलत बस्त नरारा वर्ण चेन नाही मुख ना मसारा कहण न जाई खेल तुम्हारा नानक रेण संत चरणारा सूही महला पंजवां तौ मैं आया सरणी आया पुरुषाय आया कृपा आया ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी मार्ग गुरह पठाया राव महादुतर माया जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया करो धर्म राया गृह अंध कु पाया पावक सगराया गही ओट साधाया नानक हार त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवां अहंकार छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पास बेनंतियां मिले नाम अधारा तुठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा भगतां की टेक तू संतां की ओट तू सच्चा सिरजणहारा राहु सच तेरी समगरी सच तेरा दरबारा सच तेरे खा जीनिया सच तेरा पासारा तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दरसारा हाँ कुरबाणी तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगमया पर गुरु नानक मिलया पार ब्रह्म तेरिया चरणा कौ बलिहारा राग सूही महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा भाणा तू है मनाही जिसन होए दयाला साई भगत जो तुद पावै तू सर्ब जिया प्रतपाला मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी जो तुद पावै सो परवान मन तन तुए आधारी राव तू दयाल कृपाल कृपा निद मनसा पूर्ण हारा भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा
ਤੂੰ ਅਥਾ ਅਪਾਰ ਅਤ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਪਾਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਸੁਖਦਾਤੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਤੁਧ ਪਾਵਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾਂ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਨਾਹੀ ਜਿਤ ਤੂੰ ਕਬਹੂੰ ਸੋ ਥਾਨ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਆਠ ਪੈਰ ਜਿਤ ਤੁਧ ਤੇ ਆਈ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ ਦੇਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਉ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਣ ਆਇਆ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿੰਨ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇਆ ਰਹਾਉ ਬੇਦ ਪੜੇ ਪੜ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਰੇ ਇਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਫਿਰੈ ਮਿਲ ਲਾਤੇ ਤੇ ਭੀ ਮੋਹੇ ਮਾਈ ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਜੇ ਹੋਏ ਵਰਤੈ ਮਹਾਂਦੇਵ ਅਵਤੂਤਾ ਤਿਨ ਕੀ ਅੰਤ ਤਿੰਨ ਭੀ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਤੇਰਾ ਲਾਏ ਥਕੇ ਬਿਭੂਤਾ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਰਸ ਹਰ ਸੰਤੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਿਓ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੈ ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰੋ ਤਰੀਐ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕੁਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮਜਨੇ ਸ਼ਨਾਨਾ ਇਸ ਕਲ ਮਹਿ ਮੈਲ ਭਰੀ ਜੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜੈ ਵੇਦਕ ਦੇਵ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਾਸਤ ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਏਕ ਅਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈ ਸੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਦਰੈ ਸੋ ਕਲ ਮੈ ਘਟ ਘਟ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨੈ ਓਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਜੀਵਣ ਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤਾਂ ਬਣਿਆਈ ਸੰਤ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਈ ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਉਧਰੈ ਜਮ ਤਾਂ ਕੈ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਵੈ ਤਿਨ ਹਰ ਸਿਉ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪਉ ਕਾਟੈ ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਆਵੈ ਜਿਹਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰ ਅਰਾਧੇ ਸੋ ਸੰਤਨ ਤੇ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੇਤਕ ਵਰਣਉ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਪਾਣੇ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤੇ ਸਭ ਸੇ ਸਭ ਤੇ ਪਏ ਨਿਕਾਣੇ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹਾਗਨ ਤੇ ਤੁਧ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਪਏ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਆਸ ਚੁਕਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੁਧ ਜਿਤ ਆਇਆ ਉਭਰੇ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਪਰਵਾਸਾ ਤੁਮਰਾ ਜਪ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਉਧਰੇ ਰਾਉ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢ ਲੀਏ ਤੁਮ ਆਪ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਾਰ ਸਮਾਲ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦੀਏ ਜਾ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਛਡਾਈ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰਾਈ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਪਰਮ ਗਇਆ ਪੈ ਮੋਹ ਬਿਨਾਸੇ ਮਿਟਿਆ ਸਗਲ ਵਸੂਰਾ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਕਰੀ ਸੁਖਦਾਤੈ ਭੇਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਬ ਕਛ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਬ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਕਵਨ ਕਰਮ ਕਰ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਠਾਕੁਰ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਈ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਈ ਰਾਉ ਗਣਤੀ ਗਣੀ ਨਾ ਛੂਟੈ ਗਤ ਹੂੰ ਕਾਚੀ ਦੇ ਏ ਆਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰਣੈ ਹਾਰੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਿਰਾਲੀ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਘਟਘਟ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਈਐ ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿਲ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੈ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈਐ ਨਿਰਗੁਣ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣ ਅਗਿਆਨੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਜਿਨ ਘਰ ਤਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸੇ ਆਏ ਸਬਲਤ ਨਾ ਕੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕਹਿਹੋ ਬਲ ਜਾਈ ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਰ ਚਬਰ ਟੁਲਾਵਾ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ ਰਹਾਉ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਈ ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚੇ ਸੇ ਧੀ ਦਾਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤਿੰਨ ਜਾਤੇ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਟੋਵਾਂ ਹਾਰ ਜਨ ਕਹਿ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਾਨ ਦੇਖਣ ਪਾਵਾਂ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮੰਗੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ
मेरे राम राय ज्यों रख त्यों रहिए, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लहिए राम। मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जिस तू आप कराही, तहां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा, तू आपे शरदा लाही। सिमर सिमर सिमर नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। कुर्बान जाई उस बेड़ा सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, नानक कौ प्रभु पै कृपाला, सतगुर पूरा पाया। सुही महला पंजवा, तुद चित आई महानंदा, जिस बिसरै सो मर जाई, दयाल होवै जिस ऊपर करते, सो तुद सदा त्याई। मेरे राम मेरे साहिब, तू मैं माण ने माणी, अरदास करी प्रभु अपने आ गए, सुन सुन जीवा तेरी बाणी राव। चरण तूड़ तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कौबल जाई, अमृत बचन हृदय उर तारी, तो कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुद पैसारी, तुद जीवड़वर न कोई, जिसनों लाए लाए सो लागे, भगत तुहारा सोई। दोए कर जोड़ मांगो एक दाना, साहिब तुठ पावा, सास सास नानक आराधे, आठ पहर गुण गावा। सूही महला पंजवा, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे।

रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्श न मिटै कोई सतगुर का दिलासा नाम त्यायन सुख बल पायन आठ पैर आराधय तेरी शरण तेरे परवास पंच दुष्ट लै साधय ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सबते वड्डा सतगुर नानक जर कल राखी मेरी सूही महला पंजवा सगल त्याग गुर शरणी आया राखो राखन हारे जित तू लावे तित हम लागे क्या है जंत बिचारे मेरे राम जी तू प्रभ अंतर जामी कर कृपा गुरुदेव दयाला गुण गावा नित स्वामी राव आठ पैर प्रभ अपना त्याई है गुर प्रसाद पौ तरी आप त्याग हुई है सब रेना जीवते आयो मरी है।

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मिलावा होई। ना मैं रूप न बंके नैना ना कुल ढंग न बीठे बैना। रहाउ साई सिंगार का मुन कर आवे ता सुहागण जा कंत पावे। ना किस रूप न रेख्या काई अंत न साहिब सिमरिया जाई। सुरत मत नाही चतराई कर कृपा प्रभ लाभ पाई। खरी सियाणी कंत न पाणी माया लागी परम पुलाणी। हो मैं जाई ता कंत समाई ता कामण प्यारे। नव निध पाई अनक जन्म बिशरत दुख पाया कर गलेहो प्रीतम प्राभ राया। पणत ना

बियाले मान एक न चेतस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलया राव ना हो जति सदी नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक दिन की शरणा जन तू नाही विसरया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया अवर काज तेरा कतै न काम मिल साध संगत पज केवल नाम

चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए सब जीव अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को बल मोह पद कियो। कड़ कड़ के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृढ़ कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, गड़ गड़ के बट बट की जाने। जब उद करख करा कर धारा, प्रजा तरत तब दे अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप अपनी बूझो चारे। तुम सब ही तेरा तो निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निरलंब, आद्य नील आद्य संभ।

यदि नहीं कहूं भूत राजा अब बैठा कहूं सिमट पयो शंकर बैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए चम पब आदि जुगाद स्वरूप सुम पब अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उभार या सिख संगरो दोष जेते उठ बत पाता सकल मवेश करो रण काता जे अस तुज दब शरणी परे तिनके दोष्ट दुबत वह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याए हैं ताके कालो निकट नहीं आए हैं रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहरिहो ताके ताप तन कम हरिहो रिद सिद कर्मो सब होई दुष्ट शास्व सक न कोई

मंगलाचरण है। मंगलाचरण किसनु कहते हैं? जो अपने इष्ट की शोभा उच्चारण किया है। परमात्मा एक है, सर्वशक्तिवान है, सर्वव्यापक है, अति सतगुरु की कृपा द्वारा उसका ज्ञान हुंदा है।

0: छह मुकत, जिड़ा मुकत शब्द है ये संस्कृत है, जिदा अर्थ है आजाद हो जाना, बंधना तो रहत हो जाना। जिमें देखो कोई व्यक्ति किसी कर्म करके जेल में कैद हो जाता है, अभी कहने वो बंदी खाने में पै गए, वो बंदी में पै गए, पर जिस दिन वो जेल खाने तो बाहर हो जाए अज्ञान मुक्त हो गए। महाराज कहने हे अकाल पुरख, जेड़े तेरा सेवन करते हैं वो माया दे बंधना तो, वो विकारा दे बंधना तो, वो मैं मेरी दे बंधना तो मुक्त हो जाते। से मुक्त रहे, भाई साहब ने ठीक दृष्टांत है, से मुक्त भय, वो मुक्त हो गए, मुक्त हो गए कौन? जिन हर त्याया, जिन्हों ने उस हरि त्याया, उन्हों हाजर नाजर समझिया, जिसनों सदा अपनी सामने के हाजर हजूर है के जाहर जहूर। हूँ साड़ी बदकिस्मती की, असियां ने गुरुद्वारे बह के झूठ ना बोलो, इहदा दूजा अर्थ की निकलेगा? बाहर जाके बोलो, नहीं नहीं जिहड़ा इत्थे है उत्थे भी है, जिस तो इत्थे डर है उत्थों बाहर भी डर है। इस वास्ते हर जगह असी हर पैड़े काम तो बचना है, मुक्त हो। पातशाह ने से मुक्त बहे जिन हर चाहिया। फिर होया कि तिन टूटी जम की फांसी, ठीक है भाई साहब, फांसी, फांसी का मतलब होंगे फसी, फांसी का मतलब फाई। तिन टूटी जम की फांसी, उन्होंने गलों जमा की फाही टुट गई, कटी गई, खत्म।
1: जिन निर्भो जिन हर निर्भो त्याया जी, इनका भो सब गवासी।
0: जिन जिन्हों ने, देखो मैं कोई अपने को अर्थ नहीं करा, जिन इहदा मतलब जिसने भी, इसे भी कहा जाता है कि जिहड़ा गुरबाणी का उपदेश है, खत्री ब्राह्मण शूद वैश उपदेश चों वरना को, इस सारिया ने ही है। जिन्होंने भी ऐसे निर्भव परमात्मा नू, जो निर्भव किसी के डर थले, कि उहदे विशेष गुणों में गुण है जो निर्भव है। गुरु अर्जुन देव पातशाह ने निर्भव जपै सगल भव मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे। जिन निर्भव जिन हर निर्भव त्याया जी, जिन का पाओ सब गवासी। उदा सिमरन, उदी याद, उना दा हर तरह दा पाओ डर दूर कर देगी।
1: जिन सेविया जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी।
0: जिन सेविया जिन्होंने भी सेवे, जिन्होंने भी सेवे मेरा हर, मेरे उस वाहिगुरु नू सेवना की है, उदी बनाई हुई सृष्टि के जीवन नाल प्यार कर, उन्हां दा दिल ना दुखाउणा, उन्हां नाल धक्का ना करना, उन्हां नाल बेइंसाफी ना करना, ये उदी सेवा। अज असीं भाई कन्हैया जी नू क्यों याद करते, क्यों उन्हां दी कीती हुई सेवा दी उस्तुति करदे नहीं थकदे? उन्होंने सचमुच साखी तुहानू सारी आउंदी है, जदों वर्दियां गोलियां विच चलदे तीरां विच वो पानी पिला रहे, वो कोई वितकरा नहीं कर रहे, शिकायत भी हो गई, कलगियां वाले पातशाह ने बुला लिया, क्यों भाई कन्हैया जी तुहाडी शिकायत है, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਦੇਖਿਆ, गुरुदेव कहें जिन सेवया मेरा हर्ज, उस मेरे हरि नु जिन्होंने सेवया ते हर हर रूप समाप्त। हुण इत्थे रूप दे पप्पे नु सियाही है, ये तुहानू तां समझ आवेगी जे तुसीं गुरका साहब ते देखो। ये ठीक है कि मेरी आवाज मेरा बोलना तुहाडे कन्नां नु मिठा लगेगा चंगा लगेगा, पर जो मैं पढ़ाउणा ते समझाउणा चाहुंदा ते जो इन्हां गुरु प्यारियां दा चाह है कि सानू बाणी दी गल समझ आ जाए, वो तां आवेगी जे तुसीं गुटका साहब दे उत्ते ध्यान रखो। इत्थे रूप दे पप्पे नु सियाही है, जिहदा मतलब है रूप विच समासी, समासी का मतलब समा जाना एकमिक हो जाए। तुसीं आखोगे किवें हो सकदा, यही गल तां गुरबाणी ने समझाउणी है। रोज तुसीं सुखमनी साहब पढ़दे ज्यों जल मैं बोलो, ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग। जे तुसीं वगदे दरिया विचों एक पानी की बाल्टी लैके वक्री कर दे, जदों तीकर वो वक्री रहेगी तुसीं की आखोगे, बाल्टी वाला पानी। पर जे उस बाल्टी नूं फिर दरिया विच पा दो फिर की कहोगे, दरिया। हुण उस दरिया विचों

0: तेरे अनेक पढ़े बहुत सिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म कर खट कर्म की खट करने छह कर्म भी करते ब्राह्मण ने छह कर्म अपने लिए नियत किए हैं यज्ञ करना यज्ञ कराना विद्या पढ़नी विद्या पढ़ानी दान देना दान देना ये छह कर्म भी करते हैं करते इसके ख्याल नाल ने कैसी परमात्मा की खुशी प्राप्त कर लिए
1: से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता
0: हूं उन्होंने तरीकों लैके गुरु साहब किसी बहस में नहीं कर किसी कंडम नहीं कर किसी रिजेक्ट अंदर ठीक है अपना अपना तरीका है किसे पर मेरी भावना ये है से भगत भले ये फिर बहुवचन है क्योंकि से आ गया भगत का तत्ता पुख्ता है ओ भगत सब तो भले अते श्रेष्ठ केड़े जो भाव है जो तुहानू चंगे लगे रोज तुसी पढ़ कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर नहीं हर हर भीजय राम राज जिना अंतर कपट विकार है जिना रोए क्या कीजे हर करता सबके जानदा सिर रोग हर कोई अपनिया वीकनेस कमजोरिया दे उते साथ देके पर्दा पाके लुकोना चाहे परमात्मा तो नहीं लुको वो अंतरजामी है रोज पढ़ते हैं कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की सच जानो जदों मैं वीर जसवीर सिंह जी देखू बार बार इस यानी जी काली नहीं करनी खेती नहीं करनी जिन्नी सहज न करो थोड़ा हो जाए कोई गल नहीं सानू समझते आवे तो मैं उन्होंने सहज वेख के होर सहज विचार क्षमा करना नहीं तो मेरा प्रोग्राम तो यही सी भी ये पढ़ी जाएंगे मैं अर्थ करी जाऊं पर नहीं दास की हार्दिक इच्छा होंगी है कि जिन्ना कुछ गुरबाणी नूं पढ़ो जिन्ना कुछ सुनो वो तुहानू इन्ना हिरदे विच दस जाए हिरदे विच वस जाए फिर तुसी पढ़न लगे काली नहीं करोगे फिर तुसी रब नाल सिद्धियां गल्लां करोगे तुहाडियां गल्लां रब नाल होणगियां यही गुरबाणी का कमाल है लोग रब दियां गल्लां सुणाउंदे हन गुरबाणी रब नाल गल्लां कराउंदी पर कोई समझ के पढ़े तां ही है ना तो भगत गुरु साहब ने कहा से भगत भले जन नानक जी जो भावें मेरे हर जिन्हें मेरे उस्ताद गुरु परमेश्वर चंगे लग जाते हैं वो भले हम उन्होंने जितनी शोभा की जाए रोज तुम पढ़ दो जिनके चोले रतले प्यारे कंत जिना के पास तूर जिना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास
1: तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुझे जेवड अवर ना कोई
0: ये प्यार है सच ते प्यार में तो स्वा गुरु जी तू कह के तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधक तू मेरा प्राता तू मेरा राक्षस जदों ये भेद मुक जान फिर तू मैं दा पिछू खत्म हो फिर तू मैं ते मैं तू जिन्हों गुरबाणी च सो हंग भी किया सो हंग ओ ते मैं फिर एक सचमुच जदों ये अवस्था आ जाती फिर ये मेल तेर ये दर्जा बदर्जा ये नहीं रहते ये मुक जाते तो गुरु नानक पातशाह कहने ने तू आद पुरख हे अकाल पुरख तू आद वो समा है जदों बिल्कुल संसार की कोई चीज नहीं थी उन्हों आद ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਵਰਤਮਾਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਰ ਕਾਲ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਦ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਹੋਏ ਚਾਰ। ਆਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਚ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਹਿੰਦੂ ਕਰ, ਉਹ ਆਦ ਹੈ। ਧਰਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮੇ ਪਰ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ, ਨਾ ਚੰਦ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੁੰਦ ਸਮਾਧਨ ਕਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਦਾ, ਅਪਰੰਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਧ ਜੇਵਰ ਅਵਰ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ।

जन नानक गुण गावे करते के जी। ये नानक दास उस करते दे गुण गांदा है। ये मैनू दृढ़ हो गया जो सब से का जानोई, जो सारियां दे अंदर दी जान वाला है, जिसे तो कोई लुकोया नहीं जा सकता, कोई पर्दा नहीं पाया जा सकता। सात संगत भावे मेरा टीचा या चितमणी कुछ होर सी, पर मैं वीर जसवीर सिंह जी का धनवादी हाँ। वो बार बार ये गल कहते ने काली ना करो, कोई गल नहीं, हौली हौली समझ के करो। तो मैं उन्होंने उस सहज तो भी कुर्बान हाँ। तो मेरी भी रुचि है कि बाणी नू रिड़को, रिड़कोगे तो विचों ज्ञान रूपी मक्खन निकलेगा, ज्ञान रूपी मक्खन निकलेगा तो अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाएगा, फिर साडा जीवन गुरबाणी अनुसार ही बन जाएगा। तो फिर की होगा, लोग सुखिए पर लोग सोहेले, लोग

पट्टी खोलण दे नाल पाका फिस गया। अज इस जगह दे उत्ते गुरुद्वारा साहब पाका साहब बनिया है। गुरु जी ने लोहार नू बल दिता के तू ते तेरी उलाद जिसने फूक मारोगे नसूरा नू आराम आया करूगा। मंदेर ते सैजो नगर दे लोक दुध लेके गुरु जी दे चरणा च हाजिर होए। बड़ी श्रद्धा दे नाल लंगर छकाए। महाराज ने लोकां दा प्यार वेख के खुशी दे घर विच आके क्या सिखो जिन्ना चिर गुरु घर ते श्रद्धा रखोगे तुहाडे नगरां च दुध दियां नदियां चलणगियां। तुहाडे पिंडां विच पलवान पैदा होणगे। एक गुरु जी दे वाक पूरे होए। सैदो ते मुंदे अज भी पुरवाना दे पिंड हन। इतो संग तो विदा होके गुरु साहब अगे दीना साहब वालू

रास्ते में बैठे राय कोट का मुसलमान चौधरी राय कला मिया अते गुणा दे नाल लम्बे जगपुरे जा खड़िया बेनती की गुरु जी आप हिंदू मुसलमान दे सांझे पीरो दास रूप सेवा बख्शो राय कले दा प्यार तक दे गुरदेव ने कहा चौधरी किसे समझदार ते भरोसे योग आदमी नू सरहंद भेज के साडे पुत्रां दी खबर मंगवा दे उसे वेले राय कले ने नूरे माही नू सरहंद वल तोड़ दिता सरहंद जाके जो कुछ माही ने सुनिया ओदी छाती फट गई ओनी पैरी वापस मुड़ पिया आके रो रो के दसदा हाल नूरा सूरज चन्न बदलों विच आ गया है टोडर मल सरहंद दे रहण वाला सेवा बहु बड़मुल्ली कमा गया है संस्कार लई मुल जमीन लेके साहूकार दी रीत नभा गया है महेंद्र सिंह नवाब जो कोटले का शेर खान भी लड़ तो पा गया है गुरु साहब के चरणों से टहके नूरा यो हाल दसदा है।

दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपार बख्शिश करके बखरी पहचान वाली बहादुर सूरमिया की सिख कौम नूं ठंडे बाटे का अमृत बख्शिश करके मौत दे पै तो मुक्त कर दिता।

सौ तेरा पान खलरी मेरा तीत, मैं दीवाना भया अतीत, करता था दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नी। सौ दर्शन की करो संभाए, मैं दर मांगत भी क्या पाए, किस कुसुम निर्ग में हरना, सर्व शरीर चरना, चंदन भगत जोत ने ही सर्वे परमल करना, के पर पांडा कह ना कोए, ऐसा भगत वर्ण में होए, तेरे नाम निवे रहे निवलाए, नानक तिन दर तीख्या पाए। भाई मरदाने ने रबा बजाया, गुरु बाबा जी ने त्याग शब्द का गायन किया, शब्द की समाप्ति हो गई, गुरु बाबा जी अपने आसन पर उठ के खड़े हो गए, उतो चाले पा दिते अगे अगे गुरु बाबा जी, पिछे पिछे भाई बाला मरदाना, सारा दिन चलते गए, आराम कितने चिकड़ आ जाता, गुरु बाबा जी अपना जोड़ा उतार देंगे, खुशक जगह आ जाती है, जोड़ा पहन लेंगे हैं। क्यों चलते चलते शाम तक एक नगर के नजदीक पहुंच जाते हैं, सार तंग तो नगर है ठगा का, इतने अल्फो जे तक ए टू जेड सारे ठग ही ठग रहते हैं। उस पिंड के नजदीक जाके व्यंग भी लह दे कह लगे मरदाने कि तेन रोहियां चंगिया नहीं सी लगदिया, चल तेन घुगवसदा नगर दिखाने, पर मुकाबला कर ली इस नगर का उन्होंने रोहिया के नाल। अगे गए पिंड के मुखी मुखी ठग बैठे ने, उन्होंने दूर देखा भी और जो सामने मुसाफिर आ रहे हैं उन्होंने चेहरे दग दग करते ने, जरूर इन्होंने पास कोई गुजा धन होगा, ज्यादा माल स्वभाव तो प्रतीत होंगे नहीं, इन्होंने पास हीरे लाल जो हरात हो, क्योंकि सार संगते लोग चेहरे तो अंदाजा लाते हैं इंसान का चेहरा, ये अंदर की खुशी का भी और गमी का भी, ये अंदरले भावे आत्म तन है भावे दुनियावी तन है, उसका प्रतीक होंगे। सियाने पुरुष चेहरे देख के झट अंदाजा ला लेंगे ने, हम सार संगते ने ठगा का काम की थी, आए गए मुसाफिर की बड़ी सेवा करनी, और रात के समय के पास जो माल मता होना लुट लेना, उन्होंने जानो खत्म कर देना, टके टके बरने किसी मार लेने वास्ते मामूली जी गल हो चुकी थी। खैर दो मुखी मुखी ठग उठ के अगे गए, महाराज साढ़े वो पाज आपने सानू सेवा का मौका दिता, शाम हो गई है आप साढ़े नगर च विश्राम करो, स्वागत ही चाले पा देने। गुरु बाबा जी भाई बाले मरदाने को मुखी ठगले कर लै गए, जिदा बहुत वड्डा मकान है, एक बैठक च उतारा करा दिता, महाराज पहलिया प्रसाद जाते हैं, भाई बाला मरदाना भी चरणा च बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक ठग आया, महाराज गल पानी तैयार है, दुध गर्म कर दिता है, आप हुकम भी लै आइए। महाराज कह लगे भी गल पानी या दुध वगैरह कुछ नहीं छकना, कह रहे वापस मुड़ गया। थोड़ी देर पिछों दूसरा ठग आया, महाराज इशनान वास्ते जल गर्म कर दिता है, आप बड़ा लम्मा पेंडा तय करके आयो, थकावट हुई होगी गर्म पानी वाले इशनान कर लो, थकावट लह जाएगी, जो इशनान नहीं करना पंज इशनाना ही कर लो। महाराज कह लगे भी ना कि पंज इशनाना करना है और ना ही इशनान करना है। ये भी वापस मुड़ गया। थोड़ी देर पिछों तीसरा ठग आया, महाराज भोजन भी तैयार है, जो आपका हुक्म हो ही लै आने नहीं भोजनशाला भी जाके छक लो। गुरु नानक देव जी महाराज कह लगे असि भोजन भी नहीं छकना, हम महाराज ने जवाब दे दिता। भाई मरदाना सोच रहा है मैनू तो भुख लगी है, महाराज सब कासे नूं जवाब दे जा रहे हैं। जो तीसरा ठग भी वापस मुड़ गया,
मर्दाने ने अर्ज की, महाराज आप नहीं थकना मेरे वास्ते मंगा दियो। गुरु बाबा जी कहने लगे, मर्दाने दरअसल तेनू नहीं पता है ठगा का पिंड है, सारे ठग ही ठग रहते ने। जेड़ा इन्होंने अपने वास्ते दुध गर्म किया जहर मिलाई, जेड़ा इन्होंने अपने वास्ते पानी गर्म किया जहर मिलाई, कोला वगैरह करे फिर ढेरी हो जाएंगे। और मरदाने जेड़ा इन्होंने भोजन तैयार किया प्रशादा पानी जहर ओ भी मिली है, जे जरूरत है तो मंगा रही है, मौत की नुस्ट है। मरदाना कहन गया, महाराज ऐसी गल है फिर मैनू किसे भोजन की जरूरत, की मुसाफर ने इन्हों चकन वास्ते दुध दिता वो नहीं खिच गया, इनान करने वास्ते पानी गर्म किया इनान नहीं किया, और हम छकन वास्ते प्रशादा पानी तैयार किया इन्होंने भोजन भी नहीं चकिया। अगे तो जो मुसाफर आते सन उन्होंने जो देंगे छक लेंगे, कित ऐसा ना हो सरकार ने सूए भेजे हूँ साडा भेज लैन वास्ते, पर जो मुखी मुखी ठग सन ना वो खड़ गए भावे सूए भी क्यों ना हो, आप दुठे बगैर इन्होंने जान नहीं देना। देखो ना इन्होंने चेहरे की रंगत किमें चेहरे दगदा करते ने, जरूर इन्हें पाठ की गुद्धा धन है। हम सार संघ तो ठग कह लगे नरोज नरो मुंडिया जो करो रस्ते तैयार कर लो, इन्होंने मुसाफर बंध के लोड़ के इन्हों काबू कर दो, जो इन्होंने पास माल मता है खो लो जानों मार दो। सार संघ के ठग तो इधर ही सलाह कर रहे हैं, इधर साहब गुरु नानक देव जी महाराज कह के मरदाने जे तो भोजन नहीं ना छकना प्रेम कर रूह की खुराक छक, रबाब जो तारा छेड़ तेन तेरी रूह की खुराक छकई, हर कीर्तन का आहारो हर देहो नानक के मीत। भाई मरदाने ने गुरु बाबा जी का हुक्म ही मनना सी, फिर रबाब जो तारा छेड़ दतिया, सतगुरु नानक देव जी महाराज ने फिर उच्ची सुर शब्द इं

महाराज ने एक शब्द का गायन किया, सार संगुण ठगा से ऐसी माया पई जेड़े देवता बना रहे सन या पहला मुसाफरा बन के इन्हों काबू करके मार मटा खो के इन्हों जानों मार देिए एकदम सुथरी की तरह पा जाते हैं। जिथे घोड़ा उथे डिग पैंदा है किसी ने भी अपने शरीर की शुद्ध वर तक शुद्ध बुद्ध तक नहीं रहनी। सारा ठगा ना पिंड सुस्तरी की तरह सौ गया। फिर महाराज ने रात का समा बतीत किया, अमृत वेला वह समा हो गया जिन महाराज आप संभालते सन, अपने गुरसिखा संभालने की ताकीद करते सन। चौथे पैर सुबह कह सुरते उपजा चाहो दरियावा स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा ना हो। आवाज दी भाई बाला मरदाना उठो सावधान होवो, अमृत वेला हो गया स्नान करो। भाई बाला मरदाना सावधान होए, नगर तो बाहर आप एक खूह पर चले जाते हैं। इसनान वास्ते डोरी गड़दा पास रखते सन। भाई बाले ने खूह चो जल कढ़िया, गुरु बाबा जी का इनान कराया। फिर महाराज इनान करके अपनी बिरती ने असूल सुख मुकान सरपंच उठा के उस आनंद सागर

सार्थम दुनिया प्रज्ञा दी बड़ी गुड़ी नींद सुती पई है, इंद्र सुते पए ने नैनो नींद पर दृष्ट विचार, सरवण सोए सुन लेंदे विचार, रसना सोई लोग मीठे साध, मन सोया माया विस्माद, मन भी सुता पे है इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्त तो अपनी लह, सारी दुनिया विद्या की मोहनी नींद सुती पई है और अविद्या की नींद सुती पई जिन्होंने जगाया कौन जिहड़ा आप जागदा है, सुता पिया इंसान कदे किसी सुते पे नूं जगा नहीं सकता, और एक जागदा हो हजारा सुते पे हुण उह सभना नूं जगा सकता है, हुण जागदा कौन है, पूरी मार नहीं है एहो सतगुर जागता है, देव गुरु जागदा है, इस करके उन्होंने सानू जगाने वास्ते हुक्का दिता जाग लिहो रे मना जाग लिहो कहां गाफल सोया जो तन उपजा संग ही सो पी संग ना हुआ, जेडे मोह दी नींद तो जागे उन्होंने सानू जगाने वास्ते उपदेश दिता प्राणी, परम पुरख पग लागो सोवत कहां मोह निंद्रा मैं तब वो सचित हो जागो, प्रसार तम सानू जगाने वास्ते कूका मारदे ने वेद, चांगा मारदे ने शास्त्र, मत्ता दिंदी आ गुरबाणी, पर अपने मन अंदर कोई शैतान बढ़िया बैठा है जिहड़ा आपां नूं जागण नहीं दिंदा, फरीदा को कहिंदिआं चा गहिंदिआं मत्ती देंदिआं नित जो शैतान वंजाया सोकत फेरै चित, मरदानिया ने भाग पुरश ने इन्हों के पास अमृत की गंगा चल के आई, इन्होंने चाहिदा तो यह कि बाणी रूपी अमृत के बुक भर भर के पीते, कबीर पाल सूहा सरवर भरा पी ना सकै कोई नीर, भाग वड्डे तै पायो तू भर भर पियो कबीर, पर पाए मरदाना ये अमृत के दरिया के पास बैठे होने के बावजूद फिर भी बाणी रूपी अमृत वालों प्यासे ही रह गए, सतगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख हर प्रगास, मन मुख भाग भी होणिया सिख मुहिया कंधी पास, मरदानिया ने भाग पुरश ने विद्या की मोह की नींद तो जागे नहीं सू आए था जगाने वास्ते, पर इन्हों तो लाभ नहीं उठा।

दर्शन परसें गुरु कै जन्म मरण दुख जाय हो वै शिव सुख संबंधी नूर अरसों पुरसों चटी है तुद जिठे सचे पातशाह मल

देवड़ोय। नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल बिगाड़, ना लिखी असर गावार अंगावार। सोदार केहा सो कर केहा, जित मैं सर्व संभाले, वाजे नाद अनेक संखा, उकेते वावन हारे। केते राग परिसों कही अन्न, उकेते गावन हारे, गावत हुन पौन पानी।

विचारे गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारी गावन पंडित बन रखी सर जुग जुग वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रतन पाए तेरे आठ छठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूरा गावै खानी चारी गावै खंड मंडल बर पंडा कर कर रखे थारे सही तुदन गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिब तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी हुकम ना करन जाई सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहण रजाई मुंदा संतोख शर्म बद जोड़ी ध्यान की करें बभूत खिंथा काल कुआरी काया जोगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एका माई युक्त व्याई तिन चले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जब तिस पावै तिवै चलावै जे हो वह फुरमान ओ वेखै उन्हां नजर न आवै बहुता एह बिडाण आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किस पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सचे की साची कार आदेश तस आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एक होवेश एक दूजी पौ लख हो है लख वै लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एत राहबत पबड़ियां चढ़िया हुई अकीस सुनगल आया काश कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर जपन है जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राज माल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम निज न कोए राति रुति थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती साप रखी धर्मशाल तिस विच जी जोत के रंग जनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होई विचार सचा आप सचा दरबार दिथै सोहन पंच परवान नजरी करम पवै निशान कछ पगाई उथै पाई नानक गया जापै जाई धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का एहो कर्म केते पवन बाणी वै संतर केते कार महेश केते बरमे काट घड़ी है रूप रंग के वेश केतियां करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते अंध चंद सूर केते केते मंडल देश केते सद बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते केते रतन समुंद केतियां खाणी केतियां बाणी केते पात नरेंद केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड जिथै नाथ विनोद गोढ़ आनंद शर्म खंड की बाणी रूप जिथै काट घड़ी है बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कह पिछै पछताए जिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध जिथै घड़ी है सुरस दान की सुध कर्मखंड की बाणी जोर जिथै होर ना कोई होर जिथै जोध मां बल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता मैं मा माहे दाके रूप न कथने जाहे ना ओ मरहे न ठगे जाहे जिनकै राम बसै मन माहे तिथै भगत बसै कै लोह करहे आनंद सजै मन सोए सच खंड बसै निरंकार कर कर वेखै नजर निहाल तिथै खंड मंडल वर पांड जे को कथै ता अंत न अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार
ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਾਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਪਾਉ ਫਲਾ ਗਣਤਪ ਤਾਊ, ਪਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤ ਟਾਲ। ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਲੋਕ ਪਾਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦਰਤ ਮਹਾਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਾਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ

और जल थल मांडो देश बेस पांडव, जल थल महांत देश बेस बेहंत, अनपवनाशुत्रित तरतराशु आजन बाह कैसदाहकार कथनी अनाद, खल खंड ख्याल गुरु भरया काल, कर कर प्रणाम चित चरण नाम, अंश जगात अजिज न बात, अनचंज गात अनरंज बात, आण टुट भंडार अणठट अपार, अडीठ धर्म अत टीठ कर्म, अण वर्ण अनंत दाता महंत, हर बोल मना छंद दग प्रसाद, करुणालया है अरकालया है, खल खंडन है मह मंडन है, जगतेश्वर है परमेश्वर है, कल कारण है सर्व भारण है, द्रत के तरण है जग के करण है, मन मान्या है जग जान्या है, सर्वं पर है सर्वं कर है, सर्व पास है सर्वनाश्य है, करुणा कर है विश्वम पर है, सर्वेश्वर है जगतेश्वर है, ब्रह्मांड है खल खंड है, परते पर है करुणा कर है, जपा जप थप थप है, अकृता कृता अमृत अमृत है, अमृत अमृत करुणा कृत है, कृता कृत तरणी धृत है, अमृतेश्वर है परमेश्वर है, अकृता कृत अमृत अमृत है, अजबा कृत है अमृत अमृत है, नर नायक है खल गायक है, विश्वंपर है करुणालय है, नृप नायक है सर्व पायक है, पव पंजन है हर गंजन है, रिप तापन है जप जापन है, आकलन कृत है सर्वाकृत है, कर्ता कर है हरता हर है, परमात्मा है सर्वात्मा है, आत्म वास है जस के जास है, पुजंग प्रयात शंभ, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग धाम संग शांत रूपे, नमो परम दत्तंग दत्तंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो त्यान त्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पूज पूजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे नादंग भूते, अलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस असे, नमो बांक बांके, अपंगी स्वरूपे अनंगीय नामे, दृपंगी दृकाले अनंगीय कामे, एक श्री शंभ।

सुखनापायन मूल नाम बिशुन्या मेरी मेरी तार बंधन बंधया नरक सुरग अवतार माया तंदया सोधत सोधत सोध तत विचारया नाम बिना सुख नाही सर पर हारया आवह जाहें अनेक मर मर जन्मते बिन बुझे सब वाद जोनी परमते जिनको पै दयाल चन साधु संग पया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोजें कोट असंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आप नेड़ा ते सहे।

गुण गावा दिन रात नानक चाहुए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम।

और जिससे सुपाइए सो सरदारा संभालिए क्योंकि तब आई अपना था काल बुरी तो काली मल्ला मूल नाम की चई दिलमी नजरने वाली है।

क्यों ना पायो, बिल्कुल इतनी ना पाया, सतगुरु आप वचन सर प्रगट आप सुनाया, सतगुरु ने आश्रम तुम चुका तुम्हें चारा।

सुहारो नानक पुन संग मोय उदारो सुखमनी सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना के मन विश्राम रहा। प्रभु के सिमरन गर्भ नमस्ते, प्रभु के सिमरन दुख जम नस्ते, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे, प्रभु सिमरत कछ विघ्न न लागे, प्रभु के सिमरन आन दिन जागे, प्रभु के सिमरन पहु न व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे, प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक रंग, प्रभु के सिमरन रित सिद्ध नव निध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तद्बुद, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन बिन सह दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु के सिमरन दगे मानी, प्रभु के सिमरन होय सुफला, प्रभु के सिमरन सुफल फला, श्री सिमरै जिनाप सिमराय नानक ताके लागू पाए, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब किस सुझे, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आस्था, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि समाए, प्रभु जी वसें साथ की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते, प्रभु को सिमरै से जन प्रवान, प्रभु को सिमरै से पुरुष प्रदान, प्रभु को सिमरै से भी मोहताजी, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभु को सिमरै से परोपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सदबलिहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख ब्यावे, प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिन अनंत घनेरे, प्रभु को सिमरै वसे हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु के सिमरन कार्य पूरे, प्रभु के सिमरन कबू न जूरे, प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सहस्तमानी, प्रभु के सिमरन ने चलासन, प्रभु के सिमरन कमल विगासन, प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत न पार, सिमरै से जन जिन को प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन का प्रगट प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाय, हर सिमरन पे सिज्जति जाते, हर सिमरन नीच चोह कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगला कारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिसाप बुझाया, नान गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, श्लोक दीन दर दुख मंजना, घटघट नाथ नाथ, शरण तुम्हारी आयो, नान के प्रभु साथ अष्टपदी, जय मात पिता सुमित न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय, जय मां भयान दूध जम दल है, तय केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल हो गए भारी, हर को नाम खिन माए उदारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तर, हर को नाम कोट पाप पर हर है, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख गनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोड़ी बंदना पर है, हर का नाम जपत निस्तर है, अनेक माया रंग किस ना बुझावे, हर का नाम जपता घावे, जी मार गिर जाते केला, तें हर नाम संग हो सुहेला, ऐसा नाम मन सदा ध्याये, नान गुरुमुख परम गत पाइये, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत तें पार पराही, अनेक बिघन जय आय संहार है, हर का नाम तत्काल उधार है, अनेक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मल कभू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाई है साध के संग, जिह मार्ग के गने जाय न कोसा, हर का नाम हुआ संतोषा, जिह पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंथ तेरा को न सियानु, हर का नाम तह नाल पछानु, जह महा प्यान तप दो गाम, तह हर के नाम की तुम ऊपर छाम, जहां त्रिखा मन पुजा कर खे, तह नानक हर हर अमृत बरख है, भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट, हर जस कर संत दिन रात, हर हर औखत सार समात, हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन के वृत विवेक है, हर का नाम जन को मुकुट जुगत, हर के नाम जन को त्रिपद भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जप्त कप पर न भंग, हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजय हर हर देवा, हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना, हर हर जन के ओट सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जाने, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रसमाते, आठ पैर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रकट नहीं छपे, हर की भगत मुख गोह करे, नानक जन संकेते तरे, पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुणगाम,
सब तेउ तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवस है, संत प्रताप दुर्ग सब नस है। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम से आई है। नाम तुल कछवर न हुए, नान गुरुमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति, पेखे सर्व डंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र स्मृत व्याख्यान। जोग अभ्यास कर्म कर्म क्रिया, सगल त्याग मन मदे फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान हो में बहु रतना। शरीर कटाए हो में कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नान गुरुमुख नाम जपिया एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिर चिरजीव है, महा उदास तपी सखी वै। अगन माहे होमत प्राण, कनक अश्व हैवर कुमदान। न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयम साधन। निमख निमख कर श्री कटावे, तो भी हो मैं मैल न जावे। हर के नाम सम सर कछ नाहे, नान गुरुमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीरथ दे छुटे, गर्व गुमान ना मन ते हुटे। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कभू न भिख्या टरे। जल तो वे बहु दे अनीत, शुद्ध का हुए काची भीत। मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच। बहुत स्याण जम का पौ व्यापे, अनेक जतन कर कृष्ण ध्रापे। एक अनेक अगन नहीं बुझे, कोट उपाव दर गह नहीं सिजे। छूट स्नायु पयाल, मोह व्यापे माया जाल। अवर करतूत सगरी जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे, सात संग एहो मैं छोरे। जे को जन्म मरण ते डरे, साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानकता के बल बल जासा। सगल पुरुख में पुरुख प्रदान, सात संग जाका मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सो गलिये सब ते ऊंचा। जा का मन हुए सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल कृष्ण साजना। सुख दुख जन सम दिष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निर्धन को धन तेरो नाव, निथावे को नाव तेरा थाव। निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा को देवो दान। कर्ण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गत निज जानो आपे, आपन संग आप रभ राते। तुमरी उस्ता तुम ते होए, नानक अवर ना जान सोए। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सात संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उद्दम में उद्दम भला, हर का नाम जपो जी सदा। सगल बानी में अमृत बानी, हर को जा सुन रसन वखानी। सगल थान ते ओ उत्तम थान, नानक जे कट वसे हर नाम। श्लोक निर्गुनियार इयान्या, सो प्रभ सदा समाल। जिनकी आतिस चीत रख, नानक निभी नार अष्टपदी। रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू साज सिवार सिगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सुख सूद। दिल पया ऊपर साख सैन, मुख पियाओ बैठ को दैन। ए निर्गुण गुण कछु न बूझे, बख्श लियो तो नानक सीजे। जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे, सुत परात मीत बनता संघसे। जे प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक मूला। जे प्रसाद भोगे सब रसा, सगल सामग्री संग साथ बसा। दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना, पिसे त्याग अव संगरचना। ऐसे गोप मूड अंग व्यापे, नान काट लियो प्रभापे। आद अंक जो राखन हार, तिस्यो प्रीत न करे गवार। जा की सेवा नवनिध पावे, तांस्यो मूड़ा मन नहीं लावे। जो ठाकुर ससदा हजूरे, ताखु अंधा जानत दूरे। जा की टैल पावे दरगे मान, किसे सारे मुगद जान। सदा सदाए पूलन हार, नानक राखन हार अपार। रतन त्याग कौडी संग रचे, साथ छोड़ झूठ संग मचे। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पर आने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाय तिस पर हरे। चंदन लेप उतारे धोए, गर्द प्रीत फसम संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नान काट लियो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मांस जात, लोग पचारा करे दिन रात। बार प्रेक अंतरमल माया, छपस नाय कछ करे छपाया। बार ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्या पहलो सुवान।
अंतर अगन बाहर तंसुआ गल पाथर कैसे तरह था जाके अंतर बसे प्रभात नानक तेजन सह समात सुनंदा कैसे मार्ग पावे कर गए ओढ़ निभावे कहाँ बुझात बूझे डोरा निष्कह तो समझे पूरा कहाँ विष्ण पद गावे गुंग जतन करे तो भी सुरभंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तुआ उस गवन करतार करना में दीर बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाय सुहावे न चीत जो बैराई तासु प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसे अनंत केर माया रंग रसे दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह चूट विकार महालोभ त्रो याऊ जुगत बिहाने कहीं जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पहें अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बार तेरे तुमरी कृपा में सुगनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूतरधारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास दा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ के लागे आन सुहाए नानक कहू न सी जई बिन नावे पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण खोट कवावे एक बीना दे दस बीहिर ले तो मूड़ा को कहा करे जिस ठाकुर से नाही चारा ताको कीजे सब नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख पाहु मन उठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व सुख नानक किन पाया अगरत साह अपनी दे रास खात पीत बरते अनुलास अपनी अमान कसब और सहाले अज्ञानी मन रोष करे अपनी प्रतीतापी खोवे बहु रुष्टा विश्वास न होवे जिसकी बस किस आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनेक पांच माया के हेत सर पर हो जान अनेक बिरख की छाया स्यो रंग लावे ओ बिनसे ओ मन पछतावे जो दिसे सो चालन हार लपट रहे होते हैं अंध अंधार बताओ स्यो जो लावे नहीं ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन तन कुटम समाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जोगन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस्त्र वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रो मो अभिमान मिथ्या आपस ऊपर कर्तगुमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्व को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या वास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल देह नानक हर हर नाम लय दृति ताकत की आर्जा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों किरपन के निरारस दाम तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाव नानक ता कह बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु परवीन बार पेख न काहू पीर अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन्म मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सुख जाने अपना किया पैमाने आपे आप करत निबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव स्यानव सगल ते रहत सब कर जाने आत्म की रहत जिस पावे तिस लय लड़ लाए खान थनंतर या समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरि श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिस जाय अमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मनमाए जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिस को सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मनंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग कत अवर लुभावे जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैता का जस गावी जय जे प्रसाद तुझ सब को माने मुक्ता को जस रसन बखाने जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
प्रभु जी जपत दरगह मान पावे नानक पत सेती घर जावे जे प्रसाद रो कंचन देही लिव लाभ किस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाक प्रभता के जे प्रसाद तुझ को ना पहुँचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद आपूखन पैरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन तिस प्रभु को कभू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सत्य से ध्याई तिसे त्याय जो एक अलग है इहा उहा नानक तेरी रखे जे प्रसाद करें पुन बो दान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनुरूप जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक जस कहे जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद देखे विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद संपूर्ण फले जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभ त्याग अव कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड़ तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तासो रात जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सुनाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किनु लया जित जित लाभ तित लगे हर नाथ नानक इनके कछु न हाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुक्ता हुए सुनमीता नानक बिनवंता सात जना की अचरज कथा हस्पदी साध के संग मुख उजल हो साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रकटे सो ज्ञान साध के संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत निबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा ही समानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल है साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग नक तू धावे साध संग अस्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध के संग ना बीगा पैर साध के संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नाही हो ताप साध के संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कबू धावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस्त गोचर लहे साधु के संग अजर सहे साध के संग बसे थान ऊंचे साधु के संग महल पहुंचे साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु के कुर्बान साध के संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीत कुटम निस्तारे साधु के संग सो धन पावे जिस तन ते सब को वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुरदेवा साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुरु गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जन्म साध के संग नाही कछ काल दर्शन पेटत होत निहाल साध के संग कलू कथर है साध के संग नरक पर हर है साध के संग इहा उहा सुहेला साध संग विचरत अलमेला जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न बिथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाओ साध के संग नमन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध के संग लगे परम मीठा साधु के संग कट कट मीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पै हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुने ते तब ख्याने साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर
साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा श्राव्य अंत, साध की शोभा उचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची, साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न भाई श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखा एक अस्विन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमला लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टमान जैसे राज रंग को लागे तुल्पमान, ब्रह्म ज्ञानी के तीरज एक जो वसदा को खोद को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक जो पावक का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन होय प्रगास जैसे तारु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने है सबसे नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भय नानक जिन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का।

सुभला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सज्जागत ब्रह्म ज्ञानी अंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म

ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदादेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथे आना जायद आखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुकुट जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की

क्रोध विकराल, कभू सर्व की हो त्रिवाल, कभू होए बह बड़ राजा, कभू के खारी नीच का साजा, कभू अपकीर्त में आवे, कभू पला पला कहावे, ज्यो प्रभ राखे तिन ही रहे, गुरु प्रसाद नानक सच कहे, कभू होए पंडित करे बखान, कभू मोन तारी लावे ध्यान, कभू तट तीर्थ स्नान, कभू शिष्य साधक मुख ज्ञान, कभू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कभू सास संगते पावे, उस स्थान ते बौर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग, जो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सतगुरबान श्लोक, सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार कले, बड़े बड़े अंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राज विमान, सो नरक पाती हो स्वांग, जो जाने में जो गुणवंत, सो विष्णा का जन, आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बहु जोन परमावे, तान पूम का जो करे गुमान, सो मूर्खंदा ज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यहाँ मुकुत आगे सुख पावे, तनमंता हुई कर गर्भावे, तृण समान कच्छ संग न जावे, बहु लश्कर मान ऊपर करे आस, फल पीतर का हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, किन में हो जाए पसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी, गुरु प्रसाद जहाँ का मिटाए विमान, सो जन नानक दरगे परवान, कोट कर्म करे हो धारी, शर्म पावे सगले विस्थारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म इंद्रवे, हर दरगे को कैसे गवे, आपस को जो पला कहावे, तिसे पलाई निकट ना आवे, सर्व की रे जा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए, जब ये जाने में किस करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल ना ही चीत, जब लग मोह मगन संगमाए, तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हो छूटे, सहस खटे लख को उठावे, तृप्त नावे माया पाछे पावे, अनक भोग भिख्या के करे, मैं तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राजय, सुपन मनोरथ मिथे सब काज, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ पागी से प्राप्त होए, करुण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करुण करावन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए, जो किसकीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबू के संग, बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक, मरे ना बिन से आवे ना जाए, नानक सधीरे समाए, आप उपदेश है समझे आपे रचिया सबके साथ, आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका ओ करने हार, उसते पिन कहू किछ होए, थान थनंतरे कैसोए, अपने चल आप करने हार, कौतक करे रंग अपार, मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरु प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिरले चीना, पला पला पला तेरा रूप, अत सुंदर अपार रूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कट कट सुनी श्रवण बखाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत, श्लोक संत शरण जो जन परे, सो जन उदरनहार, संत की निंदा नानका, बौर बौर अवतार अष्टपदी, संत के दुखन आर्जा घटे, संत के दुखन जम तेरी छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलिन, संत के दुखन शोभाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान त्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जोन लवे, संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाओ को ना है, नानक संत पावे ता ओई भी गत पाए, संत का निंदक मात पाई, संत का निंदक खिंटिकन ना पाई, संत का निंदक मां त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखियार दीन,
संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दोख मैं दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख। संत का दोखी सदा पवित्र, संत का दोखी किसी का नहीं मित, संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्याग है, संत का दोखी महंकारी, संत का दोखी सदा भिखारी, संत का दोखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुखते टर है, संत के दोखी को ना ही ठाव, नानक संत पावे ता ले मिलाए, संत का दोखी अद बीच से टूटे, संत का दोखी कित काज ना पहुँचे, संत के दोखी को ध्यान परमाई है, संत का दोखी उजड़ पाई है, संत का दोखी अंतर तीर्थो था, ज्यो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दोखी की जड़ किच ना है, आपन बीज आपे ही खाए, संत के दोखी को और ना राखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार, संत का दोखी यों बिल नाए, ज्यो जल बिहू मछली तड़फड़ाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पावक की दनी त्रापे, संत का दोखी छुटे अकेला, ज्यो गुआर तिल खेत माहे दुहेला, संत का दोखी धर्म ते रहत, संत का दोखी सब मिथ्या कहत, किप निंदक का तुरही पया, नानक ज्योतिष पावे सोई किया, संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दोखी को दरगह मिले सजाए, संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी नाम रहना जीवाई है, संत के दोखी की पुजे न आशा, संत का दोखी उठ चले निराशा, संत के दोख ना तृष्ट है कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, कया कितना मेट है कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब कर तिसके वो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सास गिरास, सब कछ वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ पागी नानक जन से, श्लोक तजो सियानव सुरजनो सिमरो हर हर राये, एक आस हर मन रखो नानक दूख परम पो जाए, अष्टपदी मानव की टेक बिथी सब जान, देवन कोई कह भगवान, जिस कह दिए रहे अघाए, बहुत न कृष्णा लागे आए, मारे राखे को आप, मान के कृष्णा ही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए, नानक बिघन न लागे कोई, पुस्तक मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत्योहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पेक ठाकुर का रंग, सात संग बिसै सब संग, चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक पूजल मथा, बड़ पागी के जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाए, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, एक उठ की ओ सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्हें निरंजन जानिया, गुर प्रसाद आपन आप सुजय, तिसकी जानो कृष्णा बुझय, सात संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत, अंदिन कीर्तन केवल बखान, व्रत में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक से न लागे दुख, जिसको हर प्रभ मन चितावे, सो सं सुहेला नहीं बुलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डर है, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत्सद बूजिया, जब देखो तब सब किस मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल, न किस जन्मे न किस मरे, आपन चरित आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप, अनित जुगत रज थाप उथाप, अविनाशी नाही किस खंड, तारण तार रहो ब्रह्मांड, अलख अपे पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सुशोभावंत, सगल संसार उदय तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेल ले कृपाल, गुरु का शब्द जप पै निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनो कृपा करें बढ़ पागे, नाम जब पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान, जो किस करे सो प्रभ के रंग, सदा सदा बसे संग, सह सुवाय होवे सो होए, करने हार पछाणे सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिसते उपजे तिस माहि समाए, ओए सुख निदान उन्हों बने आए, आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान, श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ, बिथा जानन हार, जाके सिमरन उदरी है, नानक तिस बलिहार अष्टपदी,
टूटी गांधन हार गोपाल, सर्व जिया आपके प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माए, जिस थे व्यथा कोई नाए। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभा पे आप, आपन किया कछु न होए, जेसो प्राणी लोचे कोय, जिस बिन नाही तेरे किछ काम, गत नानक जप एक हर नाम, रूप पंथ होए नाही मोह, प्रभ की जोत सगल कट सो है।

की हर लोचा पूर। मन मूर्खा है बिलाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख प्रभ देनहार, और त्याग तुम किसने जितार। जो कछ करे सोई सुखमान, भूला काय फिरे अजान। कौन बस आई तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग। राम नाम जप फिर दे माहे, नानक पथ सेती कर जाए। जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज अभिमान लियो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लाल खेत संतै संग चाल, अवर त्याग विख्या जंजाल। तन तन कहे सब कोई, मुख पूजल हर घर में सोए। ए व्यापार विरला व्यापार है, नानक ता कह सद बलिहार है। चरण साध के तोय पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध की धूल करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वट भागी पाई है, साध संग हर कीर्तन गाई है। अनक बिगन के साधु राख है, हर गुण गाये अमृत रस चाख है। कोट गई संत दराया, सर्व सुख नानक ने पाया। मृतक को जीवाल हार, भूखे को देवत आधार। सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे। सब किस तिसका ओ करने जोग, तिस दिन दूसर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊंच निर्मले करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल किया। जहाँ कह मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर तरफ चीत। भगत भगत सुनिए ते लोए, जहाँ कह हृदय को होए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत। साची दृष्ट साचा आकार, सच वर्तै साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। श्लोक रूप ना रेख ना रंग किच, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न। तिसे बुझाए नानका, जिस हो वह सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख, मान की तू प्रीत त्याग। किस ते परे ना किच कोय, सर्व निरंतर एको सोय। आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गही सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। साथ तेरे की चरनी पाओ, नानक के मन एवं राव। मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई हो। हरण परन जा का नेत्र फोर, तिसका मंत्र ना जाने हो। अनद रूप मंगल सज्जा कह, सर्व थोक सुनिए करता कह। राज में राज, योग में जोगी, तप में तपीश्वर, ग्रस्त में भोगी। ध्याय ध्याय भक्त ने सुख पाया, नानक किस पुरख का किने अंत न पाया। जाकी लीला की मितना है, सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म के जाने पूत, सगल पुरोही अपने सूत। सुमत ज्ञान त्यान जिन दे, जन दास नाम त्या में से। त्यो गुण में जाको परमाए, जन्म मरे फिरा वह जाए। ऊंच नीचे तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना फेक करें एक रंग। नाना विदकीनो विस्तार, प्रभ अविनाशी एक अंकार। नाना चलत करे छिन माहे, पूर्ण रहो पूर्ण सब ठाए। नाना विद करवंत बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। सब काट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवे नानक का नाम। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगाश पताल,

ਸਤਿ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮੰਤ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਪੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੀ ਸਮਾਨਾ ਬਸ ਮਾਹੀ ਲੈ ਬਸ ਗਡਾਈ ਤਾਂ ਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ਬੂਜੈ ਬੂਜਨ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕੇਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कह रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राख निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तार है नानक सो सेवक सास सास तुम्हार है अपने जन का पर्दा टाके अपने सेवक की सर पर राख है अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राख है ताकि गत नित कोई न लाख है प्रभ के सेवक को ना पहुँचे प्रभ के सेवक पूछते ऊँचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक बैग प्रगटाया नीति पीरी में कल राख है पसम करे लश्कर कोट लाख है जिसका सास न काटता ता को राख देकर हाथ मानस जतन कर पात तिसके कर्तव्य बिथे जात मारे न राख है और न कोय सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच कर रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत मन तंत्र पिए नाम रतन जिन गुरु पाया तिस किछ अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन कृपताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठत सोत नाम कहु नानक जन कै सत्काम बोलो जस जेवा दिन रात प्रभ अपने जन की निगात करें भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने स्यों रह समाये जो हुआ हो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो आठ पह प्रभ बसे हजूरे कहु नानक सही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तन अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पुछाता सो जन सर्व शोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अवर स्यान सगली छाड तिस जन की तू सेवा लाग हाम अनजान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सत पहरा श्लोक सतपुरख चिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार से हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख बड़ भागी है सतगुर सिख का हल्प फल सुवार है नानक सतगुर सिख को जी नाल समार है गुर के गृह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछना जनावे हर हर नाम हृदय सत लियावे मन बेच सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा कर होए ने कामी तिसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस विश्वे गुरु का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हरनाओ अनेक पार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम सहत ज्ञान ले आना जाइए नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाइए सफल दर्शन पे खत पुनीत प्रस्तुत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर वचन करना गाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुरख हो जाके मंत्र अमृत दृष्ट के कह हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जेवा एक उस्तत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू भूल न पहुँचत प्राणी अगम गोचर ब्रह्म निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किन न पाई अनेक भगत बंधन मित करें चरण कमल हृदय सिमरे सद बलिहारी सदगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने यह हर रस पावे जन कोय अमृत पीवे अमर सोय उस पुरख का नाही कदे विनाश जा के मन प्रत्ये गुणतास आठ कै हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया कै संगना ले मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगाश से नानक परम मोह दुख कै के नाशे तपत माए ठाण वरताई अनंत भया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेश से साधु के पूर्ण उपदेश से पहु चुका निर्भव हो बसे सगल ब्याज मन ते फैन से जिसका साथ इन कृपा धारी साथ संग जप नाम मुरारी चित पाई चुके परम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण भी ओही कला धारण सगली मोही
अपने चरित प्रभाव बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिंदु जाना ही कोई, सर्व निरंतर को सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, पय प्रगास साथ के संग, रच रचना अपनी कलधारी, अनेक बार नानक बलिहारी। श्लोक साथ ना चाले बिन भजन, बिख्या सगली चार, हर हर नाम कमावना, नाम खेदन सार, अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव सब मीत विसारो, चरण कमल रिद में उधारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गो नाम हर वक्त, ए तन संचो हो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस रखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाए, जिस तन को चार कुंट उठ धावे, सो तन हर सेवा ते पावे, जिस सुख को नित बाँछे मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस शोभा को करें पली करनी, सा शोभा पझर की सरनी, अनिक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए, सर्व निदान में हर नाम निधान, जप नानक दरगे परवान, मन प्रबोधो हर कह नाई, दै विस्तावतावै ठाए, ता को विघन न लागे कोई, जा कह हृदय बसै हर सोए, कल ताती ठाडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पौ बिन सह पूर्ण हुए आस, भगत पाए आत्म प्रगास, चित कर जाई बसै अविनाशी, कहु नानक काटी जम फांसी, तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवागमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, यो रतन जन्म का हो उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमर शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन वंशत नानक फल पाए, संग न चाल तेरे तना, तू क्या लपतावे मूर्ख मना, सुत मीत कुटम अरबंता, इनते कहो तुम कवन सना था, राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार, अस्ती रथ सवारी, झूठा डंप झूठ पसारी, जिन दिए तिस विजय न बिगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे स्याने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाए, आप जपो अबरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सार भूत सत हर को नाओ, सह सिवाय नानक गुण गाओ, गुण गाव तेरी उतर स्मैल, गिन जाय हो मैं विखैल, होए अचिंत बसे सुखनाल, सास ग्रास हर नाम समाल, चार स्यानप सगली मना, साध संग पावे सजना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगे जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहु नानक जाके मस्तक लेख, एक को जप एक को सालाए, एक सिमर एक को मनाए, एक कसके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एक को एक हर आप, पूरन पूर रहे प्रव्याप, अनेक विस्तार एक ते भय, एक अरात पराछित गए, मन तन अंतर एक प्रवराता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिर प्रभ आया, परे आतो शरणाए, नानक की प्रभ विनती अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रवदान, कर कृपा देवो हर नाम, साध जना की मांगो दूर, पार ब्रह्म श्रद्धापुर, सदा सदा प्रभ की गुण गावो, सास सास प्रभ में ध्यावो, चरण कमल सो लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नितनीत, एक कोट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार, प्रभ की दृष्ट मां सुख होए, हर रस पावे बिरला कोय, जिन चाख्या से जन तृप्ता ने, पूरन पुरुष नहीं डोला ने, सुवर भरे प्रेम रस रंग, उपजय चाओ साध के संग, परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास अंधिन लिवलाग, बड़ पागी जपिया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ हुए दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुख जन भया, जन्म मरण दुख क्रम गया, इच पुनी श्रद्धा सब पूरी, रव रहा सत्संग अजूरी, जिसका साथ तिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिस्तरे जे काल न पाने, सो क्यों बिस्तरे जे किया जाने, सो क्यों बिस्तरे जिन सब किस दिया, सो क्यों बिस्तरे जे जीवन जिया, सो क्यों बिस्तरे जे अग्न में राखे, गुरु प्रसाद को बिरला लाखे, सो क्यों बिस्तरे जे बिखते काडे, जन्म जन्म का टूटा गाडे, गुरु पूरे तक ए बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो ए काम, आम त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अग्रह नाम जपावो, भगत पाए करिए संसार, बिन भक्ति तन हो सीचार, सर्व कल्याण सुख निदनाम, बूढ़ जात पाए विश्राम, सगल दुख का होत नाश, नानक नाम जपो गुणतास,
उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर ही सुआ नेत्रोपेक दर्श सुख होए मन विकसय सात चरण धोए भगत जना कह मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर मया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वत्सल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त कृतपाल आद पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जप है सो ही पुनीत भगत पाए लावे मन हित हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त भोग पाए एक निखर के गुण गाए अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकर्णी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत सात संग प्रभ देव निवास सर्व सूचनान प्रगास श्लोक सर्गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आपन किया नानका आपके ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार एक अचना दृष्टेता पाप तुम तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संकमात जब इसका वर्ण चिह न जापत तब हर्क शोक कौक से व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन के आप वर्तीजा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकुट कौ किस कौ गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर कहु कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहि सुभाय तब शिव सकत कहु कित ठाए जब आपे आप अपनी जो करे तब कौन निडार कौन तत् डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपनासन कहे जन्म मरण को कहाँ विनाशन जब पूरन करता प्रभ सोए तब जाम की द्रास कहु किस होए जब अभिगत अगोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर गा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही प्रजा जह निर्मल पुरख पुरख पथ होता तह बिन मैल कहु क्या धोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत को कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संस्थमावे तह किसे पूर्व कवन तृप्तावे करण करावन करने हार नानक करते का नाय सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माई बाप मित्र सुत भाई जह सर्व कला पे परवीन तह वीर कते कहाँ कुचीन जब आपन आप उद्धार है तौ सगन अप सगन कहाँ विचार है जह आपन ऊच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा विस्मन विषम रहे विस्माद नानक अपनी गत जानू आप जय अचल अछेद अभेद समाया उहां किसे व्यापक माया आप इसको आपे आदेश तेह गुण का नहीं प्रवेश जय एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जय आपन आप पतियारा तह कौन कथे कौन सुनने हारा बहु व्यंत उचते ऊंचा नानक आप इसको आपे पहुँचा जय आप रचियो प्रपंचाकार तेह गुण में कीनो विस्तार पाप कुंते पही कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल होम है मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओब खान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोच है तो नानक एक है जय अवगत भगत है आप जय पसरे पसार संत प्रताप दो पाख का आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे अनचोज आपे रस भोगन निर्जोग जिस पावे तिस आपन नाय लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे बेसुमार अथा गणत तोले ज्यो बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक ही को पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार जहाँ तिस पावे ता सृष्ट पाए अपने भाणे ले समाये तुम ते पिन नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परोए जहाँ को प्रभ जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जन सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस रात है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बार जानो साथ
गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रत पाले जीवन बहु पाप जो जो रचियो सो तिसे त्याग जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करें हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करनहार नानक इक जान्या जन लागा हर एक नाए तिसकी आसना बिथी जाए सेवक को सेवा बनियाई हुकम बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जा कह मन बस्या निरंकार बंधन तोड़ भय निर्वैर अंधिन पूजे गुरु के पैर ए लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभा पह मेले सात संग मिल करो आनंद गुण गावो पर परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण काय है स्वाव आठ पहर प्रपे कुनेरा मिटे अज्ञान बिनसै अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हलत पलत दोय लेहो सवार राम नाम अंतर उधार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परीखिया मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते फो जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभे खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर ना आवे जाए तिससे दूर कहाँ को जाए उबरे राखन हार से आए निरपो जपे सगल पौ मिटे प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तान सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसे सुहोत निहाल ताके निकट नावत काल अमर पै अमरा पद पाया सात संग नानक हर ध्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्कट माए अनेक रंग नाना दिष्टाए नौ निज अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस छन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत कट कट ब्याप रहा भगवंत तरन माहे आकाश प्याल सर्व लोक पूरन प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आ गया तैसा करम पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंट दह दिशे समाए तिस ते तिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत में देख सस्यर सूर नक्षत्र में एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप डोल न कभू डोले सर्व कला कर खेल है खेल मोल न पाई गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार रिहो स्वामी ओतपोत गुर प्रसाद भ्रम का नाश नानक तिन में विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिस किए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हुए सोई सुखमाने करण करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोह।

वह तिसले मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्व पूत आवरतारा, सर्व नैन आप खनहारा, सर्व समग्री जाका तना, आप जस आप ही सुना, आवन जान खेल बनाया, आज्ञाकारी की माया, सब कह मद अलिप तो रहे, जो किछ कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लय समाए, इससे होए सो नाही बुरा, हो रहे कहो किने कछ करा, आप पला करतूत अतनी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संग्राच, ताकि गत में कही न जाए, दूसर हो तो सो जी पाए, तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद दान के जान, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए ले प्रभ सोए, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुकुट जिस हृदय भगवंत, तन तन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तर आया, जन आवन का यह सुहाओ, जन के संग चितावे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार, श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनित्यागो तरंग, संजना की तूर मन मांग, आप छोड़ बेंती करो, साथ संग अगन सागर करो, हर तन के पर ले भंडार, नान गुरु पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहजानंद, साथ संग पज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चितवो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाले रतन, सुनत कमावत होत उधार, आप करें लोक के निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जा के मन लागा हर रंग, जय जय शबद अनाद वाजय, सुन सुन अनद करे कब गाजय, प्रगटे गोपाल महात के माथे, नानक उदरे तिनके साथे, शरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभाप मिलाए, मिट गए बैर पे सबरेन, अमृत नाम साथ संग लैन, सो प्रसन्न पे गुरुदेव, पूर्ण हुई सेवक की सेव, आल जंजाल विकार से रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभधारी, नानक निधि खेप हमारी, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकागर चीत, सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सोत निधान, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए, सब ते उच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम शांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब के मद सकल के उदास, सुंदर चतुर्थ का बेता, सुंदर सी एक तिष्ठेता, ए फल तिस जन के मुख पने, गुरु नानक नाम बचन।

शास्त्र वेद बखानी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत के मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जमते छुटे,

मेरे पर सिर भी चाहते सारा सी परवाल मारिया सारा सी परवाल मारिया ओ सच्ची सरकार हाथ जोड़ के मंगला मिल जाए सवाल मेरी हाथ जोड़ के मंगला मिल जाए सवाल

0: एटम है शीर्ष निभाना, एटम है शीर्ष निभाना, केवल पर्वत का हर जोड़ के बदला मिल जाए सवालू, मेरी हाथ जोड़ के बदला मिल जाए सवालू, मेरी हाथ जोड़ के बदला मिल जाए सवालू।
1: केड़ी वस्तु भेट चढ़ावा ऐ मेरे दतार, फल भी तेरे फुल भी तेरे, तेरे रत्न जवार, तन मन धन मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, ज्यो कुछ है सत्या पाचा, सब कुछ तेरा, तेनू अर्पण करन जोगे मेरे कोल कुछ नहीं, इको कणी प्रेम है बाकी, जे होवे स्वीकार तेरे जीवन ते निर्ज मारदा हाँ। हर एक सिफत दे विच कमाल सी तू, कवियां विचों श्रोमणी कवि सी तू, उच्चे कवियां दा उच्चा ख्याल सै तू, दानी ऐसा सरबंस भी वार सकदा है, माची वाड़े विच कला ख्याल सै तू, पीर पीरां दा जोधियां सिर जोधा, काल कालां दा ऐपर अकाल सी तू, निरा तरस मासूम मजलूम दे लई, बार जुल्म दे रुकण लई ढाल सै तू, की सिफत करां मैं तेरी, प्रीत मलारन गिले अपकार गिने ना जांदे तेरे, बंके शैल छबीले मुख तेरे ते नूर इलाही, मार रिया चमकारा काले बदलों के बिच चमकण, जो बिजली दियां तारा फूर सब फरिश्ते तेनू होण देख दरमांदे, चंद सूरज भी तेरे कोलों नीमी पालंग जांदे, चंद सिफताना होईयां तेरियां, लाया जोर बथेरा किरपा करके चरनी ला लो, ठहरा दास है तेरा, जुगो जुग टल गद्दी ते विराजमान चबर तख्त दे मालक, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी अंदर जुड़ बैठे खालसा जी, सब तो पहला साडी ते अपनी हाजरी गद्दे पातशाह दे चरणां विच लवावो, गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शक्ति रब जी नूं कौन जाण सकदा, सागर नीर जो तोलना ना पोवे, सिमरन वास्ते जगह कंत चंगी, रौले बिचना बाणी का जाप होवे, धर्म करन लई देर दी लोड़ कोई ना, करिए देर च करना पाप होवे, ठहरा आखदा उहनूं मछंदगी की, जिहदे बल परमात्मा आप होवे। आप वड्डे भागां वाले हो जो साहबां दी निक्की गोद विच जुड़ के मेरे साहब धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी दे अंदर गुरुद्वार दी शोभा नूं बढ़ा के सब तो वड्डी सेवा प्राप्त कर रहे हो, ये सब तो वड्डी सेवा है जिहड़ी गुरुद्वार दी शोभा बढ़ा देनी, ते किसे प्रचारक दे किसे कथावाचक दे किसे लागी दे कुछ बोल सुन लेने, ये सब तो वड्डी सेवा है। मेरे सतगुरु दे पातशाह कृपा करन सतसंगत वड्डियां भागां वाले नूं प्राप्त हुंदी है। अज भगत नामदेव जी का जन्म दिहाड़ा है, सिख संगतां नूं लख लख बधाई होवे। भगत नामदेव जी ने 60 शब्द उच्चारण किए, नित दियां नमस्कारां हो रही ने, तन तन श्री ग्रंथ साहिब की हजूरी के अंदर जुड़ बैठे हो। भगत नामदेव जी ने अपना जीवन भगती के पासे वल लाया है, 14वीं ते 15वीं सदी के विच भगती की लहर चली, जिसके अंदर नामदेव कबीर तलोचन सदना इन्हां सारे भगत साहिबाना ने बद चढ़ के नाम जपया, इन्हां नूं मुसीबतां दा भी सामना करना पिया। भगत नामदेव जी जिन्हां नूं घर दे विचों ही भगती दी वल प्रेरणा हुई, पिता उन्हां दा सेठी तिन्नां दिनां लई बाहर गया, अपने पुत्त दी ड्यूटी लगा गया कि तैं उठ के अमृत वेले इशनान करके कपला गां चोणी है ते ठाकर नूं भोग लवाउणा है। हुण भगत नामदेव जी बचपने उठे ने, इशनान किया, कपला गां नूं चोया, सोने की जी अमृत भरी सी कटोरी सी उस रख के दुध बैठ गए अर्जा कर, कहते प्रवान करो भोग लावो, पर हुण यह नहीं पता भगत नामदेव जी नूं कि मेरे पिता जी ने चमचा मुँह ला के बाकी आप छक लेंदे ने, इस तरह पंडितां ने भोले भाले लोगों नूं अपने मगर लाया होया सी। ते भगत नामदेव जी नीचा करके बैठ गए, तो जिस तरह धन्ना भगत जी बैठ गया सी इस तरह अजे भी बैठे हुए ने, आखिर मन के अंदर प्रेम है श्रद्धा है, भगवान का सुखासन डोलिया तो वो जी अमृत की कटोरी थी सोने की कौली पा के रखा, अमृत भाव दुध उसनों प्रवान किया भगवान ने। हुण नामदेव जी महिमा होने लगी, हर रोज़ उठते ने भगवान के दर्शन करते ने, उन्हां दी महिमा सारे हर पासे खिलरी। एक दिन भगत नामदेव जी गणेशपुर के नाल एक संत मंडली के नाल दिल्ली वालू रवाना हुए, दिल्ली में जाके जमुना के किनारे से पांडवों का बनया कोई किला है, वो डेरा किया, मंडली ने आराम किया, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਗਾਏ, ਲੋਕੀ ਆਣ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ, ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਦਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਂਬਾਤੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਈ ਗਊ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾ ਸਕਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੱਠਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਪੈਰ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਈ ਗੋਈ ਗਏ ਗਾਂ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਆਖਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਐਤਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਬੈਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਹਜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਤਕਾਰ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੱਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋਈ ਗਊ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣਾ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਗਏ, ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਢਿੱਡ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਰਦ ਹਟੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਛਕ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰਿਆ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਏ। ਬੜੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਚੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਸੰਗੀਓ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਢਾਡੀਆਂ ਰਾਗੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਏ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦਨ ਜਾਣੇ, ਜਿੱਤਾਂ ਸੋਹੇ ਤੇਸਾ ਪਛਾਣੇ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਏ।

बाहो दाही संगता आयोटा मार के बाहो दाही संगता आयोटा मार के सुंदर बच्चा फेटा सतगुरु

रग रात में बजा तकिया दी मां पढ़ू जहानो मां पढ़ू जहानो तकिया दी मैं मारू मत ओ मारू मत जकिया दी नहीं ऐसा मत ऐसा मत जावा गा तेरी यादों बाजे

0: कर दिता पल मेरे अपने दास का डेरा
1: हाजिर हाजिर दे बपिता फिर कट लो मेरा
0: हाजिर हाजिर दे बपिता फिर कट लो मेरा हाजिर है गुरुदेव पिता फिर कट लो मेरा हाजिर है गुरुदेव पिता फिर कट लो मेरा
2: भाई जय राम जी लाहौर के रहने वाले खत्री बरादरी के बिचों आण के अपना सीत के पिता सच्चे पातशाह आप जी नूं तिन आवाजां मारनियां पईआं खिंबा करनी सच्चे पातशाह आउंदिआं देर हो गई महाराज उस नूं डोले तो फड़ के लूणिआ कहिंदे अजे भी पिछे मुड़ जा सिंखा तेरा दिल डरे जां डोले महाराज कृपा करो हुण इस तरह ना आखो भाई दया राम जी नूं गुरदेव तंबू दे अंदर लै गए तलवार चली धड़ बखरा सिर बखरा ते गुरदेव हुण फिर अपने उस स्टेज ते आ गया गर्म गर्म लहू दियां बूंदां तलवार दे विच चिपक रहीआं ने महाराज ने पहलां वाली आण के मंग फेर कीती संगीओ समय ने अपना पंध मका लिया इतिहास बोलदियां बहुत गलतियां हो जांदियां ने संगत बख्शन योग है बख्श लैणा कल दे दीवान दे अंदर इस प्रसंग नूं फिर आप संगतां दे नाल सांझा कीता जाएगा मान सन्मान दा सारी साध संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी साथ दे रहे सन ढाडी साथी गुरदयाल सिंह जी ढक मजारा गुरदेव सिंह जी लांधड़ा सरंगी मास्टर हरपाल सिंह जी पाल जडाला मंडकी दास डॉक्टर हरमिंदर सिंह जी खहरा तहसील फलौर जिला जलंधर आओ जो फतेह का जवाब गज वज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह.
3: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
4: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874 ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ

जोरी बच्चे का डर हूंगी लाल का, तू पिता साडा मैं हाँ तेरा बाल का, उस वेले तू छाली मैनू मालका, वेल तू छाली मैनू मालका जम जो

सतगुरु मैं श्री गुरुदेव सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ काल कलेश तन माहि मिटाओ काल कलेश तन माहि मिटाओ दीन दर्द दुख भंजन काट काट